0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: पाप में तो पक्का निश्चय है, उसकी विशेषता है निरंतर मैं पाप का और पाप मेरा, ये निरंतर विजय सफलता की विजय।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: शुभ भावना रखी, शुभ कामना।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Hehehe.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अभी भी सच्चे दिल के सने में
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Title there.

0: इसी टाइटल को सदा याद रखना। कोई पूछे आप कौन है तो यही कहना, दीवार पुरुषा रहती हूँ। ठीक है, सभी को मंजूर है, मंजूर है। अभी ढीला पुरुषार्थ नहीं चलेगा, समय आगे भाग रहा है, इसीलिए अभी तीव्र पुरुषार्थ बढ़ना ही है। समय की पुकार तीव्र पुरुषार्थ
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: उसका नाच महसूस भी किया। ये न करके ये करना चाहिए था। समझ में आ जाता है पीछे, उसको अच्छी तरह से रियलाइज कर दे जो दोबारा नहीं हो। फिर भी प्रोग्रेस हो सकती है। उस समय समझ में आता है ही बात। मानो आप में सहन शक्ति कम है, ऐसी बात जिसमें आपको सहन शक्ति यूज करना है। एक बार आपने रियलाइज कर लिया, जैसे आजकल के जमाने में चीज वही होती है पुरानी, लेकिन पॉलिश ऐसी कर देती है जो ऐसे भी नहीं। तो माया भी ऐसे पॉलिश करके आती है जो बात का रहस्य वही होता है। उसी रूप में नहीं आती तो कई बार सोचते हैं ये बात तो पहली वाली तो वो थी ना, ये तो बात ही दूसरी हुई ना, लेकिन बीच वही होता है। सब रूप परिवर्तित हो Kittel.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा हर एक बच्चे को नंबर वन

Harpacik.

Chubby. Chai de ye ye. Slough. Gaga. Sag ka rang bhi lag jata. Alla pehle ban maga. हो जाएंगे दोनों यान बहुत हो गई है तो समझती है समय पर सोचा तो है क्या है उस पर अटेंशन अटेंशन का नोट तो होता है लेकिन बहुत काल या बहुत काल में बीच बीच में बहुत काल से रवासी चालू हो जाती है वो रिजल्ट ज्यादा

अभी तो आप सभी पुराणों की लिस्ट वाले हो, थोड़े नए नए मेजॉरिटी पुराने के लिस्ट में और फाइनल पेपर अचानक होना है, डेट फिक्स नहीं होनी। तो कोई भी अपन

0: principe per Ramano Sarote. Slie Sadate Cerce. Potate Cerce de Pie. Un coto babdada. Tibar pulsara di occhi l'estruperate. Attention di te. Lekin kuch samay tibar kuch samay beech mein phir paper aate. Usme
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा ने देखा कि पुरुषार्थ भी सब बच्चे करते हैं, पुरुषार्थ की लगन भी है। अपने से क्या करेंगे।

0: 100. अपने आप अपना प्रोग्राम बनाओ, अपना प्रोग्राम बनाओ, जिसमें बिजी रखो। अपना प्रोग्राम आप बनाओ, टाइम टेबल अपना आप बनाओ, मन को बिजी रखने का। चाहे मनन करो, चाहे सेवा करो, चाहे एक दो को अटेंशन खिंचवाओ, लेकिन बिजी रहो, मन से बिजी। शरीर से बिजी तो होते हो, लेकिन मन से बिजी रहो। मन के बिजी रहने में बिजनेसमैन नंबर वन पर
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: Shit.

संगम्बर विजयी बन रहे हो वह अनेक बार बने हुए को रिपीट कर रहे हो, इसलिए समस्या

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: सब ठीक आराम से रहे हुए हो? मन भी आराम में, धन भी आराम में, दोनों ही आराम है ना? है? आप मुस्कुराओ, सीरियस नहीं रहो। अब तो सब मिल गया, बाकी क्या चाहिए? नाचो गाओ, मुस्कुराना अच्छा लगता है ना? ऐसे अच्छा नहीं, मुस्कुराना खुशी है ना, तो खुशी का चेहरे पर आता है मुस्कुरा। मुस्कुराते रहो, औरों को भी मुस्कुराना सिखाओ, ठीक है ना? अच्छा अच्छा,
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

ज्यादा ग्रह

से नहीं मन से। ऑर्डर करो सुखम वतन जाना है। Giant.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: एक बात, बाप दादा इशारा देते हैं कि चलते फिरते संगठन में भी रहते हो, कोई ना कोई साथ में सेवा में होता ही, तो एक दो को आत्मा के रूप में देखो, आत्मा के रूप में देखते भी है, अभ्यास भी करते हैं, लेकिन जब आत्मा देखते हो तो आत्मा के ओरिजिनल संस्कार से देखते हो, या जो मिक्स संस्कार है वो भी दिखाई देते हैं। आत्मा देखो इसमें पास हो, लेकिन किस संस्कार से देखते हो? क्या आत्मा के ओरिजिनल संस्कार से कनेक्शन में आते हो कि वर्तमान संस्कार भी आते हैं सामने? तो बाप कहते हैं कि आज से किसी को भी एक तो आत्मा रूप में देखो, लेकिन आत्मा के जो ओरिजिनल संस्कार उस रूप में देखो, तो कभी भी आपस में जो कभी कभी बातें हो जाती है वो नहीं हो। अभी आत्मा रूप में देखते हो, लेकिन जो साथ में वो भी आ जाते हैं वर्तमान संस्कार, वो आपस में जो संपूर्ण स्थिति होनी चाहिए उसमें दूरी पड़ जाती। तो आत्मा ओरिजिनल संस्कार वाली आत्मा थी, तो ये जो अभी संगठन में रुकावट आती है वो रुकावट खत्म हो जाए।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा, कुछ समय से बच्चों को ये बता रहे हैं कि वर्तमान समय

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

sí. Chao.

धर्मराज के पाठ में भी सभी बच्चे धर्मराज के पाठ में भी

Inshallah.

Se va a cotejar.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सार फार मददगार। तो अभी क्या समझते हो व्यर्थ संकल्प? समाप्त करना।

0: शांत आत्माओं को सुख शांति का अनुभव करा सके। बाप दादा को दुखी बच्चों को देख अपने भाई बहनों को देख तरस तो पड़ता है।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: कुमान बनाना।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: Simple.

0: 是鬼不凶骨，加诺哥阿德特达隆布尼卡米阿尼基弗登哥给马奥比得给阿德特布加迪阿巴尼苏纳 तरफ वर्त मान देखते हो तो काफी परिस्थिति ऊंची हो जाती है और काफी स्वास्थ्य ऊंची हो जाती दुनिया में भी कहते हैं पहले सोचो फिर करो नहीं तो जो सोच के नहीं करते तो पीछे सोचना पश्चाताप करना हो जाता ऐसे नहीं करते ऐसे करते तो पीछे सोचना अर्थात पश्चाताप का रूप बदल जाता और पहले सोचना ये ज्ञानी तो आत्मा का गुण है ऐसा अपने को बनाओ जो अपने आप में भी मन में एक सेकंड भी पश्चाताप नहीं हो।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

उसके साथ साथ कर्म

unbalky authority. Sub authorities is raised. Kyan ko janana or kyan ke unbalky swarov ke authority mein har karam karna usme स्वरूप है चेक करो चार ही सब्जेक्ट में आत्मा हो लेकिन अनुभवी स्वरूप हो के

सीट पर सेट है तो श्रेष्ठ कर्म सफलता स्वरूप कर्म अथॉरिटी के साथ सोचते हैं लेकिन अनुभवी स्वरूप बनना योग युक्त राजयुक्त नेचर हो जाए आवश्यकता का अटैक।

0: सोचना अलग है, मनन करना अलग है, स्वरूप अनुभवी स्वरूप बनकर चलना। अभी इसकी आवश्यकता।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

fuerte.

shit.

0: společný sad nám jeden nevadí. Hotelový.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Sırf fit.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा सभी बच्चों को यही बार बार आत्माओं के प्रेत रैम दिल बनो। आजकल
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा यही चाहते हैं, आप थोड़े समय में के लिए शारद के प्रालंब स्वरूप बन जाओ। बन सकती है कि पुरुषार्थ की मेहनत अच्छी लगती है। बनेंगे प्रालंबत वाले, बनेंगे Yeah।

ایران، لیکن

Essa Warning.

अगर और आत्माओं से भी

0: आपस में ब्रह्मन आत्माएं भी मास्टर दाता बनो और दे तो मैं तो नहीं मुझे देना जब खजानों से भरपूर हो तो देते जाओ। ये क्यों करता, ये क्यों कहता, ये सोच नहीं करो। रहम दिल पर
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: अभी बाप दादा ने चोटरल बताई थी, याद है? पांच पांच मिनट सारे दिन में एक बार ड्रिल करनी है, वो की है जिसने वो ड्रिल की है, वो हाथ उठाओ। की है, की है, दोनों ने हाथ उठाए। क्यों? तो थोड़ा टाइम और टाइम नहीं किया, तो अभी क्या करेंगे? कम से कम बताएं, कम से कम बताएं, आज कम से कम आठ बारी सारे दिन में कर सकते हो, कर सकते हो तो इस वर्ष का होमवर्क, इस सीजन का होमवर्क दूसरी सीजन तक कम से कम आठ बारी ये ड्रिल जरूर करनी है, जरूर। देखेंगे नहीं चाहे मिस हो जाए तो एक घंटे में अनेक बार करके पूरा करना, नींद पीछे करना, सोना पीछे, पहले ड्रिल आठ बारी पूरा करके पीछे सोना।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: दूसरे किसको नहीं देखना, सी फादर, सी ब्रह्मा मदर, दूसरा कड़े न कड़े करेंगे तो सब,
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आप भी

假装烦恼，जवाब की प्रकृति सूर्य की शक्ति सूर्य की किरणें say

शांति से नहीं चुरा सकते, ज्ञान सूर्य स्वरूप को इमर्ज करो, किरणें फैलो, सकाश फैलो, जैसे इस

sit up.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: संगठन सभी जगह मजबूत करो, चाहे दो है, चाहे चार है, चाहे बारह है, लेकिन दो का भी संगठन ऐसा मजबूत हो जो दोनों

0: जैसे दादी को याद करते हैं ना, क्यों याद करते हो? उसकी विशेषता सबको अपनापन दिया है ना, ऐसे सभी को अपनापन दिया ना, तो क्यों आप सभी नहीं कर सकते हो? जैसे सभी ने अनुभव किया हमारी दादी है, ऐसे नहीं मधुबन की दादी है, हमारी है। ऐसे सभी ब्राह्मण एक दो में अपनापन अनुभव कर, दादी को याद करना, इसी को याद कहा जाता है समान बनना, विशेषता धारण करना, इसको कहते हैं याद। ठीक है ना, हर एक यही सोचो सब अपने अपनापन महसूस हो, ऐसे नहीं ये तो पता नहीं कौन है क्या है, एक परिवार है ना, दादी भी सभी सेंटर पर तो नहीं रहती थी ना, एक ही स्थान पर रहती थी मधुबन में, लेकिन सभी को अपनापन दिया, तो आप सभी भी अपने अपने स्थान पर रहते फिर भी अपनापन दे सकते। ये दिल के वाइब्रेशन अपना बन जाता है।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अभी समय पर मान सबको बेहद के फैराग फिरती में जाना ही होगा। समझती है कि बच्चों का समय शिक्षक नहीं बने, जब बाप शिक्षक है तो समय पर बनना, ये समय शिक्षक बनाना। ब्रह्मा बाप ने समय को शिक्षक नहीं बनाया, बेहद की फैराग आद से अंत तक रहा। भोलेनाथ का भंडार, से मेरा समझकर पर्सनल अपने मृत एक रुपए की चीज यूज की कि कन्याओं माताओं की जिम्मेवारी फिल किया कन्याओं माताओं को मेरा पन नहीं बच्चे अन्य अन्य बच्चे बेहद का वैराग्य रहा। सेकंड

0: Sabi pa to si Abraham. Isko ka jata e. Pihat ka vera. Sakar mi. Sarvaprapti kasadan hote hue sarva bachon ki zimmewari hote hue circumstance samasyae हुए पासो खेना पास विद आनर का सर्टिफिकेट ले लिया विशेष कारण
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: Yeah.

0: इसमें सबक का ऑटोमेटिक हो ही जाएगा, रहेगा नहीं पड़ेगा। क्यों किसी को भी आप उसकी आशय पूरी करेंगे, दुख के बजाय सुख देंगे, निर्बल आत्माओं को शक्ति देंगे, गुण देंगे, वो कितनी दुआएं देंगे। और दुआएं लेना सबसे सहज साधन है आगे बढ़ने का। चाहे भाषण नहीं करो, प्रोग्राम ज्यादा नहीं कर सकते हो, कोई हर्जा नहीं। कर सकते हो तो करो और ही करो, लेकिन नहीं भी कर सकते हो तो कोई हर्जा नहीं। सफल करो खजानों को। सुनाया ना, मन सास से शक्तियों का खजाना देते जाओ, वाणी से ज्ञान का खजाना, कर्म से गुणों का खजाना, और बुद्धि से समय का खजाना, समान संपर्क से खुशी का खजाना। सफल करो तो सफल करने से सफलता मूर्त बनी जाएंगे, सहज उड़ते रहेंगे, क्योंकि दुआएं एक लिफ्ट का काम करती, सीढ़ी का नहीं। समस्या आई मिटाया, कभी दो दिन लगाया, कभी दो घंटा लगाया, ये सीढ़ी चढ़ना है। दुआएं सफल करो, सफलता मूर्त बनो, तो लिफ्ट में सेकंड में पहुंच जाएंगे जहां जाओ। चाहे सुख वतन में पहुंचो, चाहे परम धाम में पहुंचो, चाहे अपने राज में पहुंचो, सेकंड में। लंदन में प्रोग्राम किया था ना 1 मिनट का, बाप दादा तो कहते 1 सेकंड। 1 सेकंड में दुआओं के लिफ्ट में चढ़ जाओ, सिर्फ स्मृति का स्विच दबाओ, बस मेहनत मुक्त।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Legen.

कुर्सी कहती है, हम शिव वंशी।

Sí.

Sıram.

bimbo.

ojos, saberes, saberes.

para.

Thank you.

Sleepy, but

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सिर्फ कमेंट्री से योग नहीं कराओ, अनुभव कराओ। अनुभव पक्का बनाती है। एक ही समय पर हर सेंटर पर एक ही प्रोग्राम और हर एक सेंटर अनुभव क्या किया वो रिजल्ट।

चाहे 3 दिन का प्रोग्राम कराओ चाहे 1 दिन का कराओ, लेकिन इकट्ठा चारों और जैसे थर्ड संडे सभी जगह रखते हो ना, अभी अनुभव कराने का प्रोग्राम चारों और एक समय लक्ष्य एक समय एक और चारों ओर देश वाले भी समझेंगे कि ये विश्व में पीस के लिए इतना इकट्ठा एक समय प्रोग्राम रख लक्ष्य रखो अनुभव बनाने का। सब सुन के चले नहीं जाए, कुछ अनुभव करके आप लोग भी बाप के बने कैसे, कुछ ना कुछ अनुभव किया जाए प्यार का, चाहे टोली खा के भी प्यार का अनुभव किया, बहनों के व्यवहार का अनुभव किया, बहनों के मुस्कुराने का आचान करने का अनुभव किया, कुछ ना कुछ अनुभव किया तभी बने हो। तो ऐसे अनुभवी बनाओ, अभी अखंड सेवा करो, बहुत सेवा रही।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Hey.

snake.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जय

0: listening.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: इस वर्ष की ये लास्ट मीटिंग है, लेकिन दूसरे

Cosa da

एक बच्चा अपनी कमजोरी को तो जानते ही है, जो विशेष कमजोरी हो आप तो जानते हो ना अपने कमजोरी। वो कमजोरी

जैसे हाथ उठाने में एवा रेडी हो गए ना, ऐसे ही त्याग करने में भी एवा रेडी। दूसरी सीजन कौन सी सभा होगी? निर्विघ्न पाप के दिल पसंद पसंद।

0: förbannar sig. Dock räcker upp sig ner på sig. Så förbannar sig. Ett och en sajog.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सबके आगे अपना अनुभव सुना। नास्तक से आस्तक कैसे बना, बड़ी सभा में अपना सुनावे, छोटे मोटे नहीं लेकिन ऐसा हो जिसका प्रभाव जनता पर पड़े। जैसे हर वर्ग की सेवा करते हो ना, तो ऐसे भी कोई तैयार करो। ऐसे ही कोई धर्म वाले को, अथॉरिटी को तैयार करो जो अपना अनुभव सुनावे कि वास्तव में जो परमात्मा परिचय सही ब्रह्मा कुमारियां देती है, ब्रह्मा कुमार देते हैं, वो राइट कैसे, उनके मुख से ये अथॉरिटी के बोल निकले। अगर एक पॉइंट रही हुई
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: वर्तमान समय

Sadas simmered.

0: सोचना, नया करना, उसकी आवश्यकता ही नहीं। जो बाप ने किया वो फॉलो फादर सहजे ना।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कई बच्चे कहते हैं हम तो बहुत सेवा करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन प्राप्ति इतनी नहीं होती है। उसका कारण वरदान सबको एक है कि दूसरा दूसरा है, एक ही है ना। 60 साल वालों को भी एक, तो 1 मास वाले को भी एक ही। खजाने सभी को एक जैसे, पालना सबको एक जैसे, मर्यादाएं सबको एक जैसी। दूसरी दूसरी तो नहीं है ना, ऐसे तो नहीं कि विदेश की मर्यादाएं और है इंडिया की और है, ऐसे तो नहीं है, है। फर्क है नहीं है। तो जब सब एक है फिर किसको सफलता मिलती है, किसको कम मिलती है, क्यों? कारण बाप मदद किसको ज्यादा देता हो, किसको कम, ऐसे है नहीं है, फिर क्यों होते? सफलता को देखा कभी कभी ईर्ष्या भी आ जाती है। वो ईर्ष्या जो दिल से सेवा करनी चाहिए वो दिमाग से करती है लेकिन दिल से नहीं। और फल मिलता है दिल से सेवा करने का, लेकिन कई बार बच्चे दिमाग चूज करते हैं लेकिन दिल और दिमाग दोनों।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अभी आप सभी भी अपना

Sí.

सभी ड्रिल

सब संकल्प किनारे कर, देखो आप सभी

रचना इस वृक्ष के जड़ में

बेफिक्र बादशाह।

See.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: तो बाप दादा खुश है, हाथ उठाने में होशियार सभी हैं।

Seman menikah, men sewajak.

0: sur vos tirs. Nemet bonne oui.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जो सदा खुश रहती है वो हाथ उठाओ, सदा खुश खुश रहती है, खुशी तो रहती है ना, खुशी तो है ना, खुशी तो नहीं जाती, खुशी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि खुशी परमात्म गिफ्ट है, परमात्म गिफ्ट संभाल के रखनी चाहिए। बात बात में हो गई खुशी क्यों जावे, बात पावरफुल है खुशी, परमात्म गिफ्ट। तो ये भी कोशिश करो खुशी नहीं जाए, सदा फेस खुश दे मारे, खुश दे मां रह सकती है, खुशी रह सकती है, रह सकती है, कांधे लाओ, रह सकती है, अटेंशन देंगे तो हो जाएंगी ना, हो जाएंगी, हो जाएंगी, पीछे वाले, पीछे वाले हो जाएंगे। तो बाप दादा सभी के लिए कह रहे, एक मास के बाद सभी से ये चार्ट मंगाएंगे कि एक ही मास खुश रहा। आज की तारीख याद करना, सभी को कह रही है, सिर्फ फॉरेनर्स को नहीं। एक मास की ट्रेल करो, कोई भी बात आवे दिल में नहीं समाना, समझना बात राइट है रॉन्ग है क्या करना है, लेकिन दिल में नहीं समा, दिल में समा जाती है तभी खुशी जाती। समझने वाला खुश रहेगा और बात को समझ के पूरी करेगा। तो एक मास का पेपर है ये, खुश रहना है, हो सकता है अल्ला बेला बन छोड़ो, हो जाएगा, हो जाएगा, नहीं करना ही है, क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि समय आप ब्राह्मणों के रोकने से रुका हुआ है। समय को समीप लाने वाले आप, तो तीव्र पुरुषार्थ करो, दृढ़ संकल्प करो, तो हो जाएंगे। रोज ये गीत याद करो, आप घर चलना है।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जी।

sí.

Yeah.

परिवार के प्यार।

एक बच्चे के प्रति। बच्चे

les déos.

Monica.

तैयार करने वाले बच्चे बाप के दिल में बच्चे और बच्चों के दिल में बाबा। सभी के मन में

Jimmy. Wow.

Kusiki jalan. Sepasut dikai diri. Bap bhi dil mein. Bye.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: सच्चा हर्ष सारी दुनिया

0: और फिश चुकी दुखों को परिवर्तन कर सदा खुश रहने का साधन सेवा में सदा उपस्थित रहते हो, सदा सेवादारी हो, सेवा सिर्फ 4 घंटा 6 घंटा करने वाले नहीं हो, हर सेकंड सेवा के स्टेज पर पार्ट बजाने वाले परमात्म साथी।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

NBA on NBA. Sadki. Nishaniye. Ki aap bachon ka.

sad. Are ready be Sarachanam combined Arthat Sat Itna Pyartike Agar Occupation be To Papar Bachoka Iki परिवर्तन करने का ऑक्यूपेशन है और फायदा क्या है कि परम धाम स्वीट होम में भी Sat chilling.

अभी कुछ नहीं कर सकता, इसीलिए ब्रह्मा बाप का आधार लिया। आप ब्राह्मणों को रचने के लिए स्वयं ब्राह्मणों के बाप भी कुछ नहीं कर सकते। Yes.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सब समय परमान, पाप समान बनने का लक्ष्य संपन्न करने समय ये मेहनत करना अच्छा नहीं। हर एक अपने को चेक करो कि मैं कर्म योगी जीवन वाला हूं, जीवन नेचुरल और सदा काल की होती, कभी कभी की नहीं। जीवन का जो लक्ष्य है अनुभवी मूर्त बनने का, वो लक्ष्य संपन्न है। सदा मस्तक से चमकती हुई लाइट खुद को भी अनुभव हो, खुद भी उस स्वरूप में स्थित हो, स्मृति स्वरूप हो। स्मृति करने वाला नहीं, स्मृति स्वरूप और स्मृति स्वरूप है या नहीं उनका प्रमाण ये है कि जहां स्मृति के अनुभवी स्वरूप है वहां अपने में समर्थि हर कार्य करते हुए भी अनुभव होगी, कार्य बिना बिना होंगे, लेकिन अनुभव स्वरूप की स्थिति बिना बिना नहीं।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा सदा कहते हैं, अगर किसी भी रूप में एक बाप का संबंध भी याद है, बाबा दिल से निकले बाबा, मंत्र माफक नहीं बाबा बाबा, वो राम राम कहते हैं आप बाबा बाबा कहते, लेकिन दिल से निकले बाबा।
2: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा ने रिजल्ट देखी, सभी के कर्मों के गति को चेक किया, पुरुषार्थ के गति को चेक किया, खजाने जमा का खाता चेक, तो रिजल्ट में क्या देगा? जमा करने का पुरुषार्थ बहुत अच्छा करते, लेकिन जो जमा करते हो उसमें परसेंटेज भिन्न भिन्न है, जितना सोचते हो जमा किया होता है जमा, लेकिन परसेंटेज थोड़ा जमा होता है, सदा के लिए जमा नहीं। जितना करते हो उतना सदा के लिए जमा में फर्क है, इसलिए बाप दादा अभी एक एक बात पर दृढ़ संकल्प कराता, क्रोध पर कराया, लेकिन मन से भी किसके प्रेत हलचल नहीं हो, क्यों क्या नहीं हो, मुख से कंट्रोल किया है, कोई कोई ने अच्छा किया, लेकिन मन से थोड़ा थोड़ा चलता है, मिटाने की कोशिश कर रही, फिर भी बाप दादा खुश है कि अटेंशन गया, समझने लगे हैं किस में मेरे कोई नुकसान है, समझा?
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: कोई भी कर्म आरंभ करते हो कंट्रोलिंग पावर, रोलिंग पावर वाली उसमें

0: जैसे हद के मर्तबे वाले सीट पर सेट हो गए फिर कार्य आरंभ करते हैं। ऐसे अपने मालिक बन के स्वराज अधिकारी सीट पर सेट हो गए फिर हर कार्य करो इस मालिक को और बढ़ाना है। और इसकी निशानी है रिजल्ट सफलता सहजन बो
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: पांच मिनट

esse.

Sentido, Adam.

Tiens.

Mais...

Jamie.

విశ్వసేవకు. Me.

Beach.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जब भी माया कोई विकराल रूप में भी आवे, क्योंकि हल्के हल्के रूपों को तो आप भी जान गए हो, अब माया भी सोचती है कि ये जान गए, लेकिन कोई खेल होता है ना, देखा है क्या? देखा है, देखा है? यहाँ बच्चे करके दिखाते हैं, तो सब समझो कि ये कुश्ती का खेल रही है। अच्छी तरह से मारो, घबराओ नहीं, खेल है तो साखी होगा, खेल करने में मजा आता है। और माया आ गई तो घबरा जाते हैं, कुछ भी ताकत अभी माया में नहीं है, सिर्फ
2: बातें ऐसे होती हैं जो
1: जो अज्ञान काल में नहीं होंगे लेकिन ज्ञान के बाद होगी। अज्ञान काल में कभी बिजनेस जो पर नहीं हुआ होगा, अज्ञान में आने के बाद हो गया। घबरा जाते हैं, ज्ञान छोड़ते हैं, लेकिन कोई भी परिस्थिति आती है, उस परिस्थिति को अपना थोड़े समय के लिए समझो, तो परिस्थिति आपको विशेष दो शक्तियां के अनुभवी बना। एक सहन शक्ति, न्यारापन, नष्ट हुआ और दूसरा सामना करने की शक्ति के आगे के लिए आप सीख लो। तो ये परिस्थिति, ये तो पाठ पढ़ाने आई है। घबराते हो ना तो माया समझ जाती है कि ये कपड़ा तो है, मारो अच्छी तरह से। घबराने पहले से ट्रस्ट है, अर्थात सब कुछ छूट गया। ट्रस्टी माना सब पाप के हवाले कर दिया। मैं

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: Skittles.

0: उसके साथ ऐसे अनुभवी आत्माएं अनुभव सुना है तो प्रभाव पड़ता है। तो अभी ये सेवा करना।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सकता है, कभी कभी हो जाएंगे।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Paul. See him gone.

0: वर्तनी आत्मा बन जात। रूहानी कर्म सेज स्वयं को भी कर्म योगी स्थिति का अनुभव कराती है। दूसरों को भी कर्म योगी बनाने की सैंपल बन जाते। जो भी उनके संपर्क में आती है वो सहज योगी कर्म योगी जीवन का अनुभवी बन जाते।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा ने देखा कि सेवा व कर्म और स्व पुरुषार्थ अर्थात योग तो दोनों का बैलेंस रखने के लिए विशेष एक ही शब्द याद रखो, वो कौन सा? पाप करावन हार है और मैं आत्मा, मैं फलानी बहुत सहज बनेगा। स्वपुरुषार्थ का बैलेंस या कभी भी

शरीर जिस प्रकार की भी माया आती है उसका गेट कौन सा है? माया का सबसे अच्छा सहज गेट जानते तो ही मैं तो ये गेट अभी पूरा बंद नहीं किया ऐसा बंद करते हो जो माया सहज ही खोल लेती और आ जाती। अगर करण हार तो कराने वाला अवश्य याद कर रही हूँ, कर रहा हूँ, लेकिन कराने वाला पाप बिना करा बना हार के कराना हार बन नहीं सकता। One.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बहुत बड़ा ग्रुप हो गया है ट्रांस पार्टी, अगर नाम निकालो तो बहुत है। वतन में आज
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा सभी चारों ओर के बच्चों को बार बार इशारा दे रही है कि अभी समय की रफ्तार तीव्र गति में जा रही है, इसलिए सभी बच्चों को अभी सर्प पुरुषार्थ नहीं बनना है, लेकिन तीव्र पुरुषार्थ बन पुरुषार्थ के प्रारब्ध का अनुभव अभी बहुत काल से अनुभव करना है। तीव्र पुरुषार्थ की निशानियां बाप दादा ने पहले भी सुनाई है। तीव्र पुरुषार्थ
2: मैं भी करूं, ये बदले तो मैं भी बदलूं, ये बदले ये करे, ये दातापन की निशानी नहीं है। कोई

0: 就是个人，都是人的想念，地方不下的地，是的，你的妈呢？感谢。
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

speak to me. But Tim Marks

Oh,

fun.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बहुत दुखी है बाप दादा को, अभी इतना दुख देखा नहीं जाता। पहले तो आप शक्तियों को देवता रूप पांडवों को रहमाना चाहिए। कितना पुकार रहे अभी आवाज, पुकार का आपके कानों में गूंजना चाहिए। समय के पुकार का प्रोग्राम करते हो ना, अभी भक्तों की पुकार भी सुनो, दुखियों की पुकार भी सुनो। अभी थोड़ी थोड़ी पुकार सुना तो सही, बेचारे बहुत पुकार रहे, जिगर से पुकार रहे, तरफ रहे। साइंस वाले भी बहुत चिल्ला रहे हैं, कब करे कब करे कब करे पुकार रहे। आपका गीत है दुखियों पर कुछ रहम करो, स्वयं आपके कोई रहम नहीं कर सकता। सागर

Ausfall. Bin a Leitski.

0: चिल्ली की किरणाए।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: समय

उस समय टच करता है, ये भी अनुभव करती है। नहीं करना चाहिए, ये श्रीमत नहीं है, ये बाबा का समान बनना नहीं है। टच भी हो

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सेवा बहुत अच्छी करो, लेकिन सेवा और स्व दोनों कंबाइंड हो, जैसे
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

कुछ समय इस बात पर संकल्प की पुरुषार्थ में अटेंशन

0: Shake. Polemon Sabata.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: इसके

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आज बाप दादा विशेष संतुष्टता का शक्ति, संतुष्टता की शक्ति हर एक बच्चे में एक संतुष्टता की शक्ति में सब शक्तियां

にそっとした。国家便以上カインバチーキー。

Esta época, que ni

आप समझते हो ये अच्छा नहीं करती तो खराब चीज है, तो अगर कोई आपको खराब

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: समय अनुसार बाप दादा समय की वार्निंग तो दे रहे हैं, तो जैसे बच्चों से क्रोध की कभी

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कुमार भी कम नहीं है। कुमार अभी सुकुमार बन गए हैं। और कुमारों के बिना से

0: Charles Patau, Komarok Kipenazi, Charles of the Nigers.
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: वर्तमान समय समीप आने के कारण बाप दादा अभी यही शरण दे रहे हैं कि समय के समीप विशेषताओं को अपनी विशेषता समझ अपमान में आते हैं

0: नहीं हो, मैं भी सब जानता हूं। ये मेरा संकल्प ही यथार्थ है, उज्जैन। ये मेरे पन का अपमान का संकल्प,
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Yeah.

you.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: जैसे बाप दादा ने पहले कहा है कि कैसे भी करके मुझे अपने साथ परम धाम में ले जाना है, चाहे मार से चाहे प्यार से ले जाना अज्ञानियों को मार से और आप बच्चों को प्यार से। ऐसे ही बाप दादा भी कहते हैं अभी भी, कैसे भी करके दुनिया के आगे महान रिश्ते रूप में प्रतिज्ञा करना ही है। तैयार हो ना, तैयार हो। बाप दादा ने सुनाया ना, कैसे भी कर इतना तो है ही, नहीं तो नहीं तो कैसे है।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जी

चलने की। Baby.

见。Deep.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा सदा कहती है, कितने भी बड़े हो, उनके पास पावर है, आपके पास परमात्मा विल पावर। परमात्मा ने विल की है पावर्स की विल पावर, तो परमात्मा विल पावर के आगे पावर्स परिवर्तित होना कोई बड़ी बात नहीं, सिर्फ स्वयं में एक संकल्प होना ही है। ये तो नहीं होगा, वो तो नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा, ये परमात्म टच उनके बुद्धि में जाने से रुकावट बन जाती, चाहे देश में चाहे विदेश में। क्यों कैसा ऐसा तो नहीं, इस संकल्प से कभी भी कोई कार्य अर्थ सामने नहीं जाओ। क्यों क्या ऐसा वैसा, ये पहले आपस में सोच के फाइनल करो, वो बात अलग है। लेकिन जब सामने जाते तो सदा दृढ़ संकल्प से जाओ, होना ही है। आकर तो सभी कुछ को नहीं, अभी सेवा में सकाश दे बुद्धियों को परिवर्तन करने की सेवा ऐड करो, फिर देखो सफलता आपके सामने स्वयं झुके।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अभी चेक करना अपने राज के संस्कार, अभी से धारण करने ही है के नहीं करना, एक के दूसरा
2: समाना पड़े, किनारा करना पड़े।
1: लेकिन बदलेंगे। हाथ उठाया पक्का कि कहेंगे मैंने बहुत कोशिश की, नहीं हुआ, ये जवाब नहीं देना, क्योंकि अभी अचानक
2: Este

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: चारों ओर के परमात्म प्रेमी बच्चों को जो सदा पाप के प्यार में उड़ते रहते हैं, तीव्र पुरुषार्थी है और सेवा में निर्विघ्न सच्चे सेवादारी है, ऐसे चारों ओर के बच्चों को बाप दादा भी देख रहे हैं, साथ साथ दूर वालों को भी देख रहे हैं और यहाँ शांतिवन में भी जो जगह जगह पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी बच्चों को बाप दादा सदा के लिए खुश रहो और खुशी बांटो, ये वरदान दे रहे हैं। खुश चेहरा, कोई भी आपका चेहरा देखे वो चेहरा देख के खुश हो जाए, कैसा भी हो आपका चेहरा खुश नुमा देख के खुद भी खुश हो जाए। ये वरदान चारों ओर के बच्चे या जो सन्मुख बैठे हैं उन सभी के लिए एक वरदान। कभी चेहरा मुड़ जाया हुआ, अगर आप मुड़ जाएंगे तो विश्व का हाल क्या होगा। आपको सदा खुशनुमा चेहरा और खुशनुमा चलन में रहना है और रहना। ऐसे सभी तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कई बच्चे मुश्किल पुरुषार्थ क्यों करते सिर्फ सोचते हैं, बस बिंदु सामने आ जाए, बिंदु बिंदु बिंदु और बिंदु खिसक जाती है। बिंदु तो है लेकिन कौन सी बिंदु, मैं कौन हूँ, ये अपने स्वमान स्मृति में लाऊं तो रमणीक पुरुषार्थ हो जाएगा। सिर्फ ज्योति बिंदु बिंदु कहते हो ना तो मुश्किल हो जाता। सहज पुरुषार्थ मौज का पुरुषार्थ, सहज योगी का ये मतलब नहीं है कि अलबेलेपन का पुरुषार्थ हो, श्रेष्ठ भी हो और सहज।
2: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जब भी कोई बड़ा प्रोग्राम करते हो उसमें संदेश तो मिलता है, अनुभव करके जाए कुछ अनुभव बहुत जल्दी आगे बढ़ाता है। जैसे ये कॉल ऑफ टाइम में या पीस ऑफ माइंड में थोड़ा थोड़ा अनुभव ज्यादा करते हैं, लेकिन जो बड़े प्रोग्राम होते हैं उसमें संदेश तो अच्छा मिल जाता है, लेकिन जो भी आवे उसके पीट करके कुछ न कुछ अनुभव करे, क्योंकि अनुभव कभी भूलता नहीं है। और अनुभव ऐसी चीज है जो न चाहते हुए भी
0: रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: मानो स्टूडेंट है, बहुत अच्छा निश्चय होती सेवादारी, सब में अच्छा है।
2: तब सेवा करें तो ये
1: व्यवस्था बड़ी अच्छी थी, अभी पता नहीं क्या हो गया। पता नहीं क्या हुआ, माया जोर गेट से आ गई। ये नहीं को पता नहीं क्या।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अभी

Yes.

0: Adam sat at a no. चाहे कोई भी काम करते हो, बिजनेस करते हो, डॉक्टरी करते हो, वकालत करते हो, जो भी कुछ करते हो, लेकिन जिस स्थान पर आप संबंध संपर्क में आते हो वो आपकी चलन से ऐसे महसूस करती है कि ये न्यारे और अलौकिक है कि साधारण समझती है, ऐसे तो लौकिक भी होते हैं। काम की विशेषता नहीं लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ की विशेषता। बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छा वकालत करता है, बहुत अच्छा डायरेक्टर है, ये तो बहुत है। एक बुक निकलता है ना जिसमें विशेष आत्माओं का नाम होता है, कितनों का नाम आता है, बहुत होते हैं। इसने ये विशेषता की, ये इसने विशेषता की, नाम आ गए। लेकिन जिन्होंने भी उठाना तो सबको चाहिए, लेकिन जिन्होंने उठाया है और उठाना ही है, तो आपके प्रैक्टिकल चलन में चेंज देंगे। ये अभी आवाज नहीं निकला है, चाहे इंडस्ट्री में चाहे कहाँ भी काम करते हो, एक एक आत्मा कहे कि ये साधारण कर्म करते भी दर्शन्य मुहूर्त है।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

बच्चों

0: ser a pavetratasi. Lekin agar ab batuaku man mesa mateo
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा बहुत बच्चों की रंगत देखते हैं। आज कहेंगे बाबा, वो मेरे बाबा, वो मीठा बाबा, क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ, मेरा संसार हो। बहुत मीठी मीठी बातें करते और दो चार घंटे के बाद अगर कोई बात आ गई तो भूत आ गया, बात नहीं आती भूत आता है। का भूत वाला भी फोटो है, देखो एक यादगार भी है भूतनाथ। तो भूतों को भी बाप दादा देखते हैं, कहां से आया कैसे आया और कैसे पका रही है, ये खेल भी देखती रहे। कोई तो घबरा कर भी दिल शिकस्त भी हो जाते, फिर बाप दादा को यही शुभ संकल्प पाता है कि इनको संजीवनी बूटी कोई द्वारा खिला के सुरजीत करे। लेकिन वो मूर्छा में इतने मस्त होते हैं जो संजीवनी बूटी को देखते ही नहीं। ऐसे नहीं करना, सारा होश नहीं गमाना, थोड़ा रख, थोड़ा भी होश होगा ना तो बच जाए।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा जय थे। एक एक बच्चा खुश निमा खुश नसीब दिखाई दे, चेहरे से चलन से क्योंकि इसके लिए बाप दादा चाहते हैं कि अभी से लक्ष्य रखो, जैसे अभी ये 75 वर्ष के कारण सबको उमंग
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आप तो विश्व के परिवर्तक हो, विश्व कल्याणकारी हो, इसलिए बाप यही चाहते कि चलते फिरते राजा पर नहीं भूलो, सीट को नहीं छोड़ो, बिना सीट के कोई ऑर्डर नहीं मानता। आजकल देखो सीट के पीछे कितना कितना कुछ करते हैं अपना हक लेने के लिए, कितना प्रयत्न करते अपना हक कोई छोड़े नहीं चाहता। आप अपना परमात्म हक, मैं कौन, हर समय जो काम करते हो
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बेटी करवा ले, अब ऐसी तैयारी कराओ करो जो सभी जैसे बाप दादा ने कहा बेफिक्र बादशाह फिक्र नहीं तो बीमारी भी नहीं। ऐसी दवाई निकालो जो कभी भी कोई थोड़ा सा तन से या मन से ना खुश हो तो दवाई को याद करते ही खुश हो। What the?

0: सभी के मन में मेरा बाबा बिठा दो तो ये दवाई हो जाए। अच्छा बैठ जाओ, बहुत अच्छा सेवा कर रही है, करते चलो। विजय तो आपके साथ है।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जब काम मिलता है तो लिखने में भी मार्क्स जमा होती, अगर नहीं लिखा तो मार्क्स एक्स्ट्रा कम हो गई, नुकसान कर दिया। जो भी डायरेक्शन मिलती है, चाहे डायरेक्ट बाप द्वारा मिलती है, चाहे समझते भी हैं कि ये महीन धागा रहा हुआ है, लेकिन निकलेंगे, लेकिन ऐसी भी पुरुषार्थी है जो छोटी छोटी कामन बातों में हाजी करने से मार्क्स ले लेते, और हो सकता है कि वो थोड़ी थोड़ी मार्क्स इकट्ठी होते हुए निकल भी सकते हैं। ऐसे भी बाप दादा के पास एक सैंपल के रूप में है,
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

Okay, good.

सी समृद्धि में चलते हैं। आप सभी अनुभव से कहते हो

0: दिवस मनाते।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बच्चों को देख तो खुश है, लेकिन आगे के लिए जो भी संबंध संपर्क में आए उन आत्माओं की विशेष
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

जुदा न थे न जुदा रहेंगे, विदा न होंगे न विदा कहेंगे। धरती गगन हो, मधुबन वतन हो, बाबा दादी संग सदा रहेंगे, बाबा दादी संग सदा रहेंगे। याद में बाबा के सदा मगन, ओ दादी आपका यही कथन, ओ दादी आपका यही कथन।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: समय पर विजय प्राप्त करने के लिए मन में बुद्धि में कैचिंग पावर और टचिंग ऐसे सरकमस्टांस आने हैं जो का दूर भी बैठे हो सकेंगे, टच होगा, ये करना है ये नहीं करना है, इसीलिए बाप दादा ने पहले भी सुनाया है। तो वर्तमान सा

Chup chow. Jesse chow. Fessy. Manor potico. Control kar sako. इसीलिए कहावत है मन जीते जगत जीत, जैसे स्थूल कर्म इंद्रियां हाथ है जहां जाओ, जब तक जाओ तब तक आर्डर से चला सकते हो। ऐसे मन और बुद्धि आत्मा में हर समय इमर्ज हो, ऐसे नहीं योग के समय अनुभव होता है लेकिन कर्म के समय, व्यवहार के समय, संबंध के समय अनुभव कम हो। अचानक पेपर

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: आज का विशेष वरदान क्या याद रखेंगे? सहज पुरुषार्थ, सहज कार्य जल्दी जल्दी किया ही जाता है, मेहनत का काम मुश्किल होता है ना तो टाइम लगता है। तो कौन हो सभी सहज पुरुषार्थ बोलो। याद रखना, अपने देश में जाके मेहनत में नहीं लग जाना।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

panasat.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अगर कोई गलती से आपके पास बुरा संकल्प आ जाए तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? आएगा तो सही, क्योंकि आपने बहुत समय बुराई को पाल के रखा है। तो देखो, पशु भी होते हैं ना, अगर पालते हैं ना तो उसको दूर भी फेंक के आते हैं, फिर भी आ जाते हैं, आते हैं ना। तो मानो आपने हाथ उठाया, बहुत अच्छा किया, लेकिन गलती से कोई कमजोरी आ जाए तो क्या करेंगे? कमजोरी लाने देंगे? हाँ, देखो इसके भी विधि बताते। अगर आपके पास आपने वायदा तो किया ना, तो दे दिया ना बुराई, बुराई बाप को दे दी ना, अच्छा कोई को कोई चीज दे देती है, और फिर अगर गलती से आपके पास आ जाती है तो आप क्या करेंगे? रखेंगे, रखेंगे अपने पास के वापस करेंगे, वापस करेंगे ना। तो अगर आपके पास थोड़ी क्रोध की रेखा, लोभ की, मोह की, अपमान की गलती से आ भी जावे, क्योंकि बहुत समय लगा है, तो वापस कर देना, बाबा मेरा बाबा अपनी चीज आप संभालो, मेरी नहीं। बाप तो सागर है ना, सागर में समा जाकर आप नहीं, यूज नहीं करना, क्योंकि अमानत हो गई ना, तो अमानत में ख्यानत नहीं की जाती। बाप को दे दो, बाप आप जानो, ये जान मैं नहीं यूज करूंगा। अपने छोटे छोटे बच्चों को भी आप सिखाते हो मिट्टी नहीं खाना, सिखाते हो ना, और बच्चा फिर मिट्टी खा लेता है ना, उसको मिट्टी अच्छी लगती है। फिर आप क्या करते हो? बार बार उसके हाथ को चुराते हो या खाने देते हो? चुराते हो ना। तो ये अपने मन को चुराना, मन में ही तो आएगा ना। तो अपने मन का मालिक बन के इस चीज को छोड़ना, ठीक है? विधि करेंगे ना, सहज हो जाएंगे। हिम्मत नहीं छोड़ना, एक कदम आपके हिम्मत का और हजार कदम बाप के मदद का है। अनुभव करके देखना, हिम्मत नहीं हारना, दिल शिकस्त नहीं होना। सर्वशक्तिवान के बच्चे, दिल शिकस्त नहीं होना, हिम्मत नहीं हारना, दृढ़ संकल्प करना, सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

छोटी छोटी बात में।

किसी न किसी प्रकार।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: हो जाए

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

see.

Somebody.

Dios, ¿cómo?

0: awesome, man.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कोई भी बंधन में जाना न जाना अनुभव नहीं रहो, जाना है आवश्यक है तो शरीर भी साथ देगा, जो चाहते है उनको दे रहे हैं, आपको दे रहे हैं ना, मदद दे रहे हैं ना, जहाँ आवश्यकता है वहाँ मदद मिलेगी।
2: फिर तो बहुत जगह भी जाना पड़ेगा
1: जी,
2: बहुत लोगों का निमंत्रण होता है किसी को, सब कहेंगे यहाँ आया यहाँ नहीं आया।
1: नहीं, उसमें भी जब देखो हो सकता है तो ना नहीं करो।

0: चल सकता है शरीर, कभी तो एकदम खराब होता है ना वो बात दूसरी, बाकी चल सकता है तो सेवा से खुशी होती। ये भी दवाई है, कितने खुश होते हैं तो सबकी खुशी की खुराक।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा तो आज हर बच्चे को देख यही जैसे बाप दादा ने दो बातें पहले ही अटेंशन में दिलाई है, क्योंकि संगम समय अचानक समाप्त होना है, तो एक समय दूसरा संकल्प दोनों की
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: सबने अपना अकाउंट रखा, जिन्होंने एक्यूरेट अपना अकाउंट रखा है, नियम परमा हिसाब से नहीं, जैसे

0: Que vir bi.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

साथ में करो कि चलते फिरते अमृत वेले आत्माओं की मनसा सेवा भी अवश्य करेंगे। ये संकल्प ले सकते हो, जैसे ये संकल्प लिया तो संस्कार को समाप्त करेंगे सदा के लिए। सदा के लिए लिए है ना, थोड़े समय के लिए तो नहीं। तो जैसे संस्कार को समाप्त कर पाप समान बनेंगे, ऐसे दाता के बच्चे बन मास्टर दाता स्वरूप से मनसा सेवा भी करनी है। सारे दिन में जो भी टाइम मिले उसमें मनसा सेवा जरूर

Y si se va a quedar.

fartarse.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बोल, में निर्माण बनो, बोल में निर्माणता कम नहीं होनी चाहिए। भले साधारण शब्द बोलते हैं, समझते हैं,
2: bye।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: अब दादा सभी बच्चों से यही चाहते समान बनने का दिखाओ। सदा संकल्प में समृद्ध समापति समारोह मनाओ। क्योंकि व्यर्थ समृद्ध बनने नहीं देंगे और जब तक निमित्त बने हुए बच्चे सदा समृद्ध नहीं बने तो विश्व की आत्माओं को समृद्धि कैसे दिलाएं। सर्व आत्माएं शक्तियों से बिल्कुल खाली हो शक्तियों के भिखारी बन चुके समृद्ध आत्मा।

Fisch, okay.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप सेवा के बिना रहता है, याद के बिना भी नहीं रहता। जितना बाप याद में रहता उतना आप मेहनत से रहते हैं, लेकिन मेहनत से, अटेंशन से। और बाप के लिए है या परम आत्मा के लिए है, आत्मा है, नंबर वन आत्मा है, तो है स्वयं बच्चों के याद के बाप रह ही नहीं सकता।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा ने एक बारी सभी सेंटर्स का चक्कर लगाया। किस बात की है तो ये दिखाई दिया कि एक सेकंड में परिवर्तन कर फुल स्टॉप लगाना इसकी कमी है। जब तक फुल स्टॉप लगाओ तब तक पता नहीं क्या क्या हो जाता। बाप दादा ने सुनाया कि एक लास्ट टाइम की लास्ट एक घड़ी होगी जिसमें स्टॉप लगाना पड़ेगा। लेकिन देखा क्या, लगाना फुल स्टॉप है लेकिन लग जाता है कमा। दूसरों की बातें याद करते ये क्यों होता, ये क्या होता, इसमें आश्चर्य की मात्रा लगा जाता तो फुल स्टॉप नहीं लगता लेकिन कमा आश्चर्य की निशानी। क्यों क्वेश्चन कि क्यों लग जाती, तो इसको चेक करना। अगर फुल स्टॉप लगाने की आदत नहीं होगी इसलिए बाप दादा होमवर्क दे रहे हैं कि खास

0: ușor atcaru. Abici la dala ușor. Să falta nai te lasă.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा मुस्कुराती रहती है तो बचता है और लाइट शुरू हो जाती है। बाप दादा समझती है कि बच्चे खड़ी खड़ी तक भी जाते हैं, लेकिन बाप दादा प्यार का सभी बच्चों को प्यार का मसाज कर लेते हैं, टांगों में मसाज हो जाते। बाप दादा का मसाज देखा है ना, बहुत न्यारा और प्यारा। बाप से मिलन का सदा आगे बढ़ाते हैं, लेकिन बाप दादा तो बच्चों को एक सेकंड भी नहीं भूलता है।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बच्चों को देख

Joguei. Mas tá sem aí.

Geschichte, Rika. Absorbi di creio apni Rika.

देखो

запусти. Nick.

0: समझते हैं। कितना बड़ा भाग्य है।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बचाना है ना। और या पोस्ट इतनी हो जाएगी जो समय नहीं मिलेगा, इसलिए शॉर्टकट आप रोज लिखो, टीचर आपकी चिट्ठी जमा करेगी और टोटल करके लिखेगी एक ही कागज में, ओके या ना नो बस। सहज है ना, इंग्लिश नहीं आवे ओके लिखना तो आएगा, नो लिखना भी आएगा, ओके लिखना भी आएगा। अगर नहीं भी आवे तो ठीक रहा और नहीं ठीक रहा बस।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: पाप में निश्चय, सभी बच्चों का है, तब तो यहां आए। पाप का भी आप सब में निश्चय है, अपना बनाए। लेकिन ब्राह्मण जीवन में संपन्न व संपूर्ण बनने के लिए स्व में भी निश्चय आवश्यक है। बाप दादा के द्वारा प्राप्त हुए
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: Swap.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जब सर्वशक्तिमान बाप साथ है तो सर्वशक्तिमान के आगे अपवित्रता आ सकती है, आ सकती है, नहीं आ सकती, लेकिन आती तो है। तो आती फिर कहां से है? कोई और
2: मानो लोभ
1: सफेद लोभ की है। जय स्टूडेंट हो जय टीचर, दोनों में राइट